बिन गुण काम ना आवई टह टेरी तनखे मेरे मन लै लाहा कर जाहे। गुरमुख नाम सलाही है हमै निवरी पाहे रहाओ। सुन सुन गंडन गंडी है लिख पढ़ बुझै पार तृष्णा अहनस अगली हमै रोग बेकार। ओह वे प्रवाहो अतोलवा गुरमत कीमत सार लक्ष्य आण पजे करी लक्ष्यों प्रीत मिलाप बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावै दुख संताप। हर जप जी अरे छुट्टी है गुरमुख जी ने आप तन मन गुर पै वेचिया मन दी असर नाल त्रिपवन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल।

मन मानक निर्मोल है, राम नाम पत पाए, मिल सत संगत हर पाई है, गुरमुख हर लिवलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल है सलल समाए। जिन हर हर नाम ना चेते हो सो अवगुण आवे जाए, जे सतगुर पुरख ना भेटे हो सो भौजल पचै पचाए, एहो मानक जियो निर्मोल है, इउं कौडी बदलै जाए, जिन्ना सतगुर रस मिलै ऐसे पूरे पुरख सुजान, गुर मिल भौजल लंघी है दरगह पत परवान, नानक ते मुख उजले तुन उपजै शब्द निशान, श्री राग महला पहला।

हर जस वखर लै चलो सहु देखै पति आए रहाओ। जिन्ना रास ना सच है क्यों तिन्ना सुख होए। खोटे वणज वणजे है मन तन खोटा होए। फाही फाथे मिर्ग ज्यों दुख कणो नित रोए। खोटे पोते ना पवै तिन हर गुर दर्श ना होए। खोटे जात ना पात है खोट ना सी जिस कोए। खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए। नानक मन समझाई है गुर कै शब्द सलाह। राम नाम रंग रतिया भार ना भरम तिनाह। हर जप लाहा अगला निरपव हर मन माहा। श्री राग महला पहला घर दूजा तन जोबन अर फुलड़ा नाठी अड़े दिन चार। पबन केरे पत ज्यों ढल ढुल जुम्मन हार। रंग माण लै प्यारिया जां जो

जेबो तेरा पड़िया होवह को रह न परिय पाई। सोई काजी जिन आप तजिया एक नाम की आया दारो है पी होसी जाय ना जासी सच्चा सृजनहारो। पांच वक्त निवाज गुजारै पढ़ै कतेब पुराणा नानक आखै गुर सदेई रहयो पीणा खाणा। श्री राग महला पहला कर चौथा एक सवान दोए सवानी नाल पलके पौकै सदा बयाल। कूड़ छुरा मुठा मुरदार तान करू प्रहा करतार। मैं पत की पंदना करनी की कार हौ बिगड़ै रूप रहा बिकराल। तेरा एक नाम तारे संसार मैं एहा आस एहो आधार। रहाओ मुख निंदा आखा दिन रात पर कर जो ही नीस नात। काम क्रोतन वसै चंडाल तानक रूप रहा करतार। फाही सुरत मलूकी वेस हौ ठगवाड़ा ठगी देस। खरा स्याणा